mata la tanandam bhavani bhavani la tanandam jai jai bhavani jai jai ho jagati amata lata nandamayi jai jai bhavani bhavani lata nandamayi jai jai bhavani अल्प बुद्धि से माता गांधो तेरा गीत बारों में नौ की तेरी सुनो नुवेदित जय जय हो जगती माता लाता नंदमाई जय जय भवानी भवानी लाता नंदमाई जय जय भवानी तेरे नामों का गीत गोला तेरा सुनो लारीत तेरे नामों का गीत गोला तेरा सुनो लारीत माघ की सष्टमी महामाया कुलदा तेरा द्वार जय जय भवानी भवानी कुलदा तेरा द्वार जय जय भवानी ताम विजय सर्वजनु भूला न गाड़ा ताम विजय सर्वजनु धूल न गाड़ा तेरा मंदिर माँ मेरी माया तब कुल न द्वार जय जय भवानी भवानी तब कुल न द्वार जय जय भवानी घूमा पुजारी नयनु देखा रांदा लोग घूमा पुजारी नयनु लखा रांदा लोग लाडू फापर तेरो चढ़ दो तब भोग लाडू फापर माता चढ़ दो तेरो भोग जय जय हो जगदपानंदा ल्योला तेरो नाम जय जय भवानी भवानी ल्योला तेरो नाम जय जय भवानी